0: साहिब तुठै जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पौख सुना जाए, नानक सेव कंडी है जिसे ती खसम समाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टर

0: को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दी 6:05 हो रहे ने। आओ हुन सुनदे आ ज्ञान अमृत।

0: कोई भी कम क्यों ना होवे, उसनू हिम्मत अते शांत चित हो के करो, यही सफलता दी कुंजी है।
1: हुने तुसी सुनिया ज्ञान अमृत। आओ हुन सरवन करते हैं भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

0: हुने तुसी सरवण कर रहे सी भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो की कड़ी मुताबिक सवेर के 6:03 हो रहे हैं। तो आओ हुण तुहानू सुनाने प्रोग्राम खेतीबाड़ी।
1: खेतीबाड़ी

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को

मानस गान प्रोग्राम च तुसी सर्वन कर रहे सी रामचरित मानस की लड़ीवार पाठ की 135वीं कड़ी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। परिचय।

आओ हुन तुहानू परिचय तहत जानकारी दी दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम आदि सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर, 8:40 ते तुसी पंजाबी फिल्मी गीता दा प्रोग्राम सुनोगे महक पंजाब दी। सवेरे 9:02 ते तुसी शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना सुनोगे। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार निशा होरा पासू शास्त्रीय गायन राग अहीर भैरव सुनोगे। इस उन्हां नाल तबले ते संगत करनगे गुणवीर सिंह ते हारमोनीयम ते उन्हां दा साथ देणगे अजय सिंह। 9:30 तुसी सुनोगे गजला। 10:02 ते समा रहेगा जी साडे टेलीफोन बेस्ड प्रोग्राम हालू फरमाइश दा। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकदे हो। दिल्ली तुसी नंबर डायल करना है 0181 23 42 173। तमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम 11:05 ते पेश कीता जावेगा। 12:05 ते समा रहेगा प्रोग्राम वस्ते वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी मेरी कलम तो कहानी सुनोगे ते कहानीकार होंगे डॉक्टर नरेंद्र कांग। फौजी वीरानी प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे जी प्रोग्राम रंगली धरती। इस प्रोग्राम च अज तुसी हरी सिंह गिल ते साथियां दे गीत सुनोगे। साड़ी दूजी सभा च शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। शाम साढ़े चार बजे असी तुहानू ले चलांगे गुरु नगरी अमृतसर, जिथे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30 ते इस ते अज मेरी खेती ते किसान उद्यमीपन ते स्वर विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी ते जानकारी देंगे हरप्रीत सिंह। शाम 7:40 ते समाचार समीक्षा सुनाई जावेगी। शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे पंजाबी वार्ता ते इस विषय होवेगा माँ बोली दा महत्व ते वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुदर्शन घेसो। रात 8:00 तुसी साडा इवनिंग शो सुनोगे जिंदगी हसीन है। रात 8:15 भगवान जगतनाथ रथ यात्रा ते आधारित कर्टन रीजर सुनाया जाएगा। रात 9:00 तुसी सुनोगे News@9। 9:15 तुसी सुनोगे स्पॉटलाइट ते रात 9:30 समा रहेगा चर्चा का विषय प्रोग्राम का। उस बाद रात 10:02 ते तुसी सुनोगे तुहाडा मन पसंदीदा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश। सो ऐसी जी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वीरवा। हुण तो बस कुछ ही पलां च तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र चो सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: इंग्लैंड दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दियां मुख खबरां। भारत पछमी एशिया विच वापर रहियां घटनावां ते नेड़ियों नज़र रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतकार दे उप मिशन मुखी नू तलब कीता आते व्यापारक समुद्री जहाज़ा उपर हमलिया ते सख्त विरोध दर्ज करवाया है। आमदन कर विभाग ने वित्तीय साल 2026-27 विच हुण तक 7,73,000 करोड़ रुपए तो वध दा सिद्धा टैक्स एकत्र कीता है, जो पिछले साल दी इसे म्याद दे मुकाबले 16% तो वध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विच कई वड्डे सुधारां दा ऐलान कीता है। क्या खादा दी ढोआ ढोआई हुण रवायती बंद माल गड्डियां दी बजाए विशेष तौर ते डिजाइन कीते कंटेनरां राही होवेगी। भारत अते बरतानिया दरमियान व्यापक आर्थिक अते व्यापार समझौता अज तों लागू होवेगा। चोन कमीशन ने हरियाणा विच वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR नूं होर 10 दिनां लई वधा दित्ता है। राष्ट्रीय महिला कमीशन दे चेयरपर्सन विजय राहतकार अज मोगा अते बल्कि 16 जुलाई नूं बठिंडा दा दौरा करनगे। महिलावां दी सुरक्षा अते विभागां दे आपसी तालमेल नाल संबंधित वख-वख प्रोग्रामां विच शामिल होणगे। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दौरान नशा तस्करां दी 847 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त करदियां ढा दित्ता है। सूबे विच 73,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर विच 2 वख-वख मामलियां च 5 तस्करां नूं एक AK-47 राइफल असले अते 30 किलोग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब लई 80 करोड़ रुपए राखवे रखे। सूबे भर विच 650 गुरु रविदास जी बगीचियां स्थापित कीतियां जाणगियां अते 6.5 लाख बूटे लाए जाणगे। भारत ने एक रोजा क्रिकेट मैचों की लड़ी के पहले मैच विच इंग्लैंड नूं 6 विकटां नाल हरा दिता है। अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते सुन सकते हो। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 7:03 हो रहे ने। प्रोग्राम सोनी सवेर नूं, बस थोड़ा जा इंतजार होर।

बिल्कुल जी, कर हर मैदान फतेह, बहुत सोहणा सुनेहा इस गीत च। असी सारयां ने जो है वो सुनिया इस गीत च, जो सुनेहा दिता गया सी। ते जिवें कि तुसी सब जानते हो कि प्रोग्राम सोहणी सवेर च हर रोज़ किसी ना किसी खास दिन बारे असी गल करते हाँ, उस तरह अज का दिन जो जी 15 जुलाई, यानी कि अज का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, विश्व युवा कौशल दिवस वजो मनाया जाता है। इस दिन की जिहड़ी शुरुआत है वह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशनस ने साल 2014 विच कीती सी। ते इसका मकसद नौजवान

क्योंकि कहिंदे ने कि अपने लिए तो हर कोई जी लैंदा है, जदों दूसरिया लिए असी जीने, यानी कि असी जेकर इस जग च आए हाँ तो क्यों ना कुछ चंगा करके जाइए, तो अजे जिहड़े शिक्षित ने इन्हां कोलों असी कुछ नवा सीख के जाइए। लो जी, इसे गल दे नाल मुकेश ते साथियां दी आवाज़ च एक गीत तुसी इंजॉय करो।

बिल्कुल जी, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तो क्यों ना फिर असी हर किसी दे नाल जिहड़ा है उह सोहणा व्यवहार करिए, ते हर किसी नूं खुश होके मिलिए, ता जो साडी जिहड़ी खुशी है उह दूजिआं तक वी पहुँचे, ते सानूं जदों असी किसी कोल जाइए ते लोग खुश हो जाण, ते जदों उत्थों वापस आईए ते लोकां नूं लगे कि हाँ खुशी वंडन आया सी। तो इसी एहसास नूं असी हमेशा अपने नाल रखना है। ते हुण गल करदे हां मौसम बारे कि IMD वल्लों की जानकारी दित्ती गई है, मौसम विज्ञान केंद्र की कहिंदा है कि अज मौसम किवें दा रहेगा पंजाब चंडीगढ़ च, ते नाल दे नाल आने वाले दिनों दे विच की जानकारी IMD वल्लों दित्ती गई है कि पंजाब च जेकर असी गल करिए बीते दिनी जिहड़ी बारिश हुई उहदे नाल किते ना किते तापमान च गिरावट जरूर दर्ज कीती गई है, पर हाले पंजाब चंडीगढ़ च जिहड़ी मानसून च मानसून ते ब्रेक लगदी हुई नज़र आ रही है जी। हाँ, IMD वल्लों कहा गया है कि हाले जिहड़ा पंजाब चंडीगढ़ च बारिश दे किसी भी तरह की कोई संभावना तो नहीं है। उमस जिहड़ी है वह लोगों नूं एक बार फिर तो झेलनी पवेगी, उमस भरी जिहड़ी गर्मी है उहदा सामना करना पवेगा। ते नाल दे नाल जेकर असी गल करिए चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र वल्लों, अज हल्की बिल्कुल हल्की कहा गया है कि जेकर होई भी बूंदाबांदी तो फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, बरनाला ये कुछ इलाके ने, इत्थे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, संभावना जताई गई है। पर हाले 19 जुलाई अगों कहा गया है कि IMD वालों कि 19 जुलाई तो बाद जिहड़ी चंगी बारिश है वो होवेगी, ते हाले थोड़ा आज क्योंकि 15 जुलाई है, हाले कुछ दिन सानू सारयां नू उमस भरी गर्मी दा सामना करना पवेगा, ते आपां उहदे लई किवें तैयार रहना है, की वो टिप्स रहणगियां, प्रोग्राम सोहणी सवेर शो दे बारे भी तुहानू जानकारी देवांगे। पर फिलहाल सोहणी सवेर प्रोग्राम च हुण वेला है जी सोहणे जे गीत दा, ते इस गीत नू इंजॉय करो, ते नाल दे नाल अपने जिहड़े तुसी अपने कम्मां काजां लई तैयारी कर रहे हो उह वी नाल दे नाल करदे रहो, ते उदित नारायण, सुनिधि चौहान ते नेहरा जोशी की आवाज़ च यह जिहड़ा गीत है इनू भी इंजॉय करो, तो नाल रिलेट भी करो अपने नाल।

वाह जी वाह, उदित नारायण, सुनिधि चौहान, नेहरा जोशी की आवाज़ से इंजॉय कर रहे सी जी तुसी गीत प्रोग्राम सोहनी सवेर च। तो जिमें कि असी पहला गल कर रहे सी कि IMD वालों जो जानकारी दी गई कि 19 जुलाई तो बाद बारिश जिहड़ी है वो चंग वधिया बारिश होगी, तो मॉनसून जिहड़ा है असी ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, कितें कदें उमस भरी गर्मी हो जाती है, कदें बारिश हो जाती है, मौसम जिहड़ा है वो रब दे रंग ने। पर बारिश का मौसम जिहड़ा ना वो सब नू पसंद हुंदा है, पर इस मौसम विच एक समस्या जिहड़ी है जिहदे नाल सारे लोग परेशान रहिंदे ने, वो है जी वाला दा।

हाँ जी, हुण जिहड़ी घड़ी दी जिहड़ियां सुईयां ने ना, ओह तुहाडे तों इजाज़त लैण वल इशारा कर रहियां ने। उम्मीद करदे हां कि अज दी सोहणी सवेर ने तुहाडे दिन दी शुरुआत नूं मुस्कान, सकारात्मक सोच ते नवीं ऊर्जा नाल भर दित्ता होवेगा। जांदे जांदे बस एक छोटी जिही गल कि अज दा दिन सिर्फ लंघन लई नहीं, सगों कुछ चंगा करन लई है। जे कोई कम कल अधूरा रह गया सी तां अज उसनूं पूरा कर लो। जे किसे नाल मनमुटाव है तां पहला पहल करके गिले शिकवे दूर कर लो। अते जेकर किसे नूं तुहाडे इक चंगे शब्द या फिर एक छोटी जी मदद की लोड़ है ना, तां ओह भी अज ही तुसी कर दो। दोस्त कहिंदे ने कि चंगे कम्मां लई ना कोई खास दिन हुंदा है, ना ही कुछ खास समां हुंदा है, सिर्फ एक चंगा इरादा होना चाहिए। इसी उम्मीद नाल अज दा तुहाडा हर कदम तुहानू तुहाडी मंजिल दे होर नेड़े लैके आवे, यही उम्मीद करदे हां। मैनू अपनी दोस्त शुभिता नू प्रोग्राम सोहनी सवेर चों हुण इजाजत दो। मुस्कुराते रहो, शुकराना करते रहो, चंगे कर्म करते रहो, क्योंकि कहिंदे ने कि हर चंगा जिहड़ा काम है ना, वह किसी ना किसी की जिंदगी विच एक नवी रोशनी बन जाता है। तो जाते जाते इंजॉय करते जाओ एक ही।

0: अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई।

0: संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।

0: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, पैक्ट अनलॉक्स ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर नियरली 99%

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो खबर सुनो। भारत ते बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौता अज तो लागू हो गया है। इस इतिहासिक समझौते तहत बरतानवी बाजारों 99% भारतीय बरामदों से कोई महसूल नहीं लगेगा। कोला ते खाण मंत्री जी किशन रेड्डी अज नवी दिल्ली में महत्वपूर्ण ते रणनीतिक खनिज ब्लाकों लई नीलामी के 8वें गेट की शुरुआत करनगे। ईरान वालों हाल ही में हॉर्मुज़ जलमार्ग विचों लंघन वाले व्यापारक जहाजों से किए गए हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाह ते नाकाबंदी मुड़ लागू कर दी है। स्पेन फ्रांस नूं 2-0 नाल हरा के फीफा फुटबॉल विश्वकप के फाइनल च पहुँच गया है। ते क्रिकेट में भारत ने कल बर्मिंघम च पहले एक रोज़ अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड नूं 6 विकट नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत ते बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौता सेटा अज तो लागू हो गया है। इस दे नाल ही समाजिक सुरक्षा समझौता, जिस नूं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, भी कार्य

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं पंजाबी फिल्म म्यूजिक दा प्रोग्राम महक पंजाब दी। महक पंजाब दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म मिलादी रब्बा यार विछड़े चो। गुरदास मान दी आवाज़ च गीत सुनान जा रहे हैं। लो जी, इंजॉय करो।

0: ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: प्रोग्राम महक पंजाब दी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम च अगला गीत सुनान जा रहे हैं फिल्म असानू मान वतना दा। ते इस फिल्म दा जड़ा गीत सुनान जा रहे हैं वो गाया है जी हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला ने। लो जी, इंजॉय करो।

प्रोग्राम महक पंजाब दी च अगला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म जट एंड जूलियट चो दिलजीत दोसांझ दा गाया गीत बहुत सोहना गीत है लो जी सुनो।

प्रोग्राम महक पंजाब दी चल रहे थे। इस प्रोग्राम च आखिरी गीत असीं तुहानू सुनाण जा रहे हैं फिल्म केरी ऑन जट्टा 3 चो आमी विरक ते गिप्पी गरेवाल दा गाया गीत। लो जी, इंजॉय करो।

महिला कमीशन दे चेयरपर्सन विजय रहाटकर अज मोगा अते पलके 16 जुलाई नूं बठिंडा दा दौरा करनगे। महिलावां दी सुरक्षा अते विभागां दे आपसी तालमेल नाल संबंधित वख-वख प्रोग्रामां विच शामिल होणगे। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दौरान नशा तस्करां दी 847 करोड़ रुपए दी जायदाद जब्त करके ढा दिता है अते सूबे विच 73,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर दे विच दो वख-वख मामलियां च 5 तस्करां नूं एक AK-47 राइफल असले अते 30 किलोग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब लई 80 करोड़ रुपए राखवे रखे। सूबे भर में 650 गुरु रविदास जी बगीचियां स्थापित कीतियां जाणगियां अते 6.5 लाख बूटे लाए जाणगे। स्पेन फ्रांस नू 2-0 नाल हरा के फीफा फुटबॉल विश्व कप दे फाइनल च पहुंच गया है। अते क्रिकेट विच भारत ने बर्मिंगम च पहले एक रोजा अंतरराष्ट्रीय मैच विच इंग्लैंड नू 6 विकटां नाल हरा दिता है। एसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी घड़ी मुताबक 9:03 हो रहे ने ते हुन पेश करन जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार निशा होरा पासों शास्त्रीय गायन राग अहीर भैरव सुनोगे। इस च उन्हां नाल तबले ते संगत कर रहे ने गुणवीर सिंह ते हारमोनियम ते उन्हां दा साथ दे रहे ने अजय सिंह। आओ सुनते हैं।

0: हुने तुसी सुन रहे सी गजला मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 10 बज रहे ने ते हुन पेश ने अज दीआं मुख खबरां। भारत अते बरतानिया विचकार व्यापक आर्थिक अते व्यापार समझौता CETA अज तो लागू हो गया है। इस इतिहासिक समझौते तहत बरतानवी बाजारा च 99% भारतीय बरामदा तो कोई महसूल नहीं लगेगा। कोला अते खान मंत्री जी किशन रेड्डी अज नवी दिल्ली विच महत्वपूर्ण अते रणनीतिक खनिज ब्लाकों लई नीलामी दे 8वें गेड़ की शुरुआत करनगे। भारत अज तो हैदराबाद विच 12वीं ब्रिक्स किरत अते रुजगार मंत्रियां दी मीटिंग दी मेजबानी करेगा। ईरान वल्लों हाल ही विच हॉर्मूज जलमार्ग विचों लंघन वाले व्यापारक जहाजा ते कीते गए हमलों दे जवाब विच अमरीका ने ईरानी बंदरगाह ते नाकाबंदी मोड़ लागू कर दिती है। राष्ट्रीय महिला कमीशन दे चेयरपर्सन विजय रहाटर अज मोगा अते बल्कि 16 जुलाई नूं बठिंडा दा दौरा करनगे। महिलावां दी सुरक्षा अते विभागां दे आपसी तालमेल नाल संबंधित वख-वख प्रोग्रामां विच शामिल होणगे। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दौरान नशा तस्करां दी 847 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त करके ढा दित्ती है अते सूबे विच 73,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब दे बागबानी स्वतंत्रता सेनानी अते रक्षा सेवावां भलाई मंत्री मोहिंदर भगत ने कल जलंधर दे बस्ती शेख इलाके विच स्थानक लोकां दीआं मुश्किलां सुणियां अते उहनां दा पहल दे आधार ते हल करवाउण दा भरोसा दिवाया है। पंजाब

0: वाह जी वाह, बहुत सोहना गीत, मोहम्मद रफ़ी दी आवाज़, फिल्म इज्जत, जो असी सारे मिलके एंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम च। आओ जानते हैं हूँ अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। हाँ
0: नमस्कार, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने जी?
1: जी, मैं रामनाथ अदावर जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो बोल रहे हैं।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुम्हारा।
1: हाँ भैन जी, धन्यवाद थोड़ा जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ
1: हाँ,
0: जी
1: सवेर से सुन रहे हैं जी अभी यहाँ पे। हाँ
0: चलो जी, फिर आज केड़ा
1: जी,
0: गीत
1: हाँ
0: सुनोगे? हाँ जी
1: गीत भैन जी, फागुन फिल्मा जी,
0: ठीक है,
1: एदा गीत है जी, एक परदेसी मेरा दिल ले गया जी।
0: ठीक है जी। आशा भोसले ते मोहम्मद रफी दा गाया।
1: हाँ भाई जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। लो जी, आओ सुनते हैं इन्हां दी फरमाइश दा एक गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम हालो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है, ते आओ जानते हैं हुन इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने जी?
2: हरविंदर सिंह रूपराय, जलंधर तो बोलता मैडम जी।
1: जलंधर तो कॉल मिली है, हां जी, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
2: थैंक यू मैडम, थैंक यू, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: हां जी, किन्ने दिन बाद कॉल लगी है फिर तुहाडी? दो तीन साल, बहुत लंबा समय है। ठीक है जी, ते तुसी आकाशवाणी रेडियो हां जी बिलकुल, तुसी इतना लंबे समय बाद तुहाडी जेकर कॉल मिली है, ते फिर ए सफर फिर तुसी आकाशवाणी रेडियो ते उदा सुनदे सी कि कॉल तुहाडी तुसी ट्राई करदे सी?
2: मैडम जी देखो, मैनू 28 साल हो गए ब्लाइंड होए नो।
1: ठीक है जी,
2: 26 साल तक मैं रेडियो सुनदा, लेकिन रेडियो ने सब तो मैनू ज्यादा जिंदगी मैनू रेडियो ने दिती है जी। जो 2 साल मैं इदा दा बताया कि मैं अपने आप नू इदा समझदा मैं सुसाइड कर लवां।
1: अच्छा जी,
2: रेडियो ने मेरी सब तो ज्यादा जिन्नी भी कह लो उन्नी मेरी मदद की।
1: चलो ये बहुत वधिया गल है कि तुहानू अंदरों मोटिवेट किया, पॉजिटिव किया। ठीक है जी, तुसी बहुत जड़ी हिम्मत है तुहानू रब वालों बख्शी गई है, ते रेडियो एक माध्यम बनया तुहाडे लई।
2: बहुत ज्यादा जी, बहुत मेनू सोहने बहुत सोहने सोहने यार दोस्त दिते आ, बहुत वधिया वधिया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੋਨੀਆ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਖਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ?
2: हरविंदर
1: सिंह जी, तुहाडे नाल गल करके बहुत चंगा लगा जी। तुसी आज प्रोग्राम च इन्ने समय बाद कॉल कीती है, तुहाडे नाल गल करके बहुत चंगा लगा। तुसी अपनी फरमाइश

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: प्रोग्राम हालो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो।
2: हैलो, सत श्री अकाल मैम।
1: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
2: मैं कुलवंत सिंह, पिंड पोजो के जिला फरोजपुर तो बोल रहे मैम।
1: बहुत बहुत स्वागत है जी तुम्हारा।
2: मैम आवाज नहीं साफ आ रही।
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी तुम्हारा। आवाज आ रही है?
2: हाँ जी, हूँ ठीक है जी।
1: ठीक है जी। हाँ जी, केड़ा गीत सुनोगे जी?
2: गीत मैम फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैंने।
1: मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दा गाया गीत।
2: हाँ जी मैम।
1: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दें तुहाडी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
2: धन्यवाद जी, ताका भी।
1: ठीक है जी। लो जी, चोर मचाए शोर फिल्म चो इन

0: खत्म न हो दिन राते,
1: खत्म न हो दिन राते मीठी प्यार की बातें,
0: होंठ अगर खामोश रहे।

0: किशोर कुमार दी आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे से जी फिल्म गौतम गोविंदा दा गीत। ते आओ चाहते हैं अगली फरमाइश केड़ी कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो,
1: प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: सोम दत्त बोलदा जी, मैं ऐसे गेट नाभे तो जी।
0: नाभे तो कॉल की है। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी।
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनोगे जी?
1: गीत सुना के प्यासा सावन मूवी का गीत है जी, मेघा रे मेघा रे।
0: ठीक है जी, लता मंगेशकर ते
1: बिल्कुल जी,
0: सतीश
1: बिल्कुल,
0: वेदाकर
1: बहुत बहुत
0: दा।
1: धन्यवाद जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। लो जी, फिल्म प्यासा सावन सन 1981 च फिल्म आई सी, ते इस फिल्म दी फरमाइश आई है, ते जरूर पूरी कर दें फरमाइश। लो जी, इंजॉय करो ये गीत।

0: हुने तुसी सुन रहे से प्रोग्राम हलो फरमाइश। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत उपलक्ष में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0% शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, ग्लेनोकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ ही मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलता

0: पूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, FM 103.6 MHz ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀਪਾਲੀ ਵਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर। बागपत उत्तर प्रदेश तो पहुंचे ने संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया ते अपार ढिंगिया। पिंड ते डाकखाना लोगर ठाकरावाला जिला फिरोजपुर तो स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरनूर सिंह, डॉक्टर राम कुमार नारंग, बलदेव सिंह भगवानगढ़ भुखिया तो पहुंचे ने। हरजीत कैंत मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो हाजिर हुए ने। और कुलवंत सिंह पोतरा लवराज सिंह औलख पिंड पोजो के फिरोजपुर तो पहुंचे ने जी। टालीवाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप चतरत, अर्नव चतरत, लाजवंती ते अनीता राणी भी हाजिर हो गए ने। और अगले सुनेहे दे नाल पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, भी सतिंदर सरताज जिहड़ा है ना वह सारियां दे दिलां च राज करते ने। सो तुहाडे काफियां दी फरमाइश मैनू सतिंदर सरताज दिख रहे ने। अगला प्रोग्राम च गीत उहनां दा लगेगा और इसी गीत नूं सुनना चाह रहे ने मेन बाजार मंडी लादुका डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो वरिंदर कालरा, रेखा कालरा, प्रीक्षित, प्राची ढींगरा ते कालरा परिवार। और बलविंदर सरा, गुणताश, रसनदीप, मनिंदर सरा पिंड मोरजड सिखा हनुमानगढ़ तो पहुंचे ने। और अगले सुनेहे दे नाल ग्राम पीपरलोड सरगाम छत्तीसगढ़ तो दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति ते शिवांश वर्मा भी पहुंच गए ने। और सतनाम सिंह गिल पहुंचे ने पिंड पक्खी खुरद डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट तो। और सलाम अदाब कौन कह रहे ने, बिहारी कलोनी महासमुंद तो मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, जेल रोड मथुरा तो सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू कालिया बेलदार, जरूर तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद ते। पेश होएगा प्रोग्राम दा अगला गीत, आवाज़ सतिंदर सरताज दी।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो और अगला सुनेहा लेके साढ़े कोल जेड़े स्रोते पहुँच गए ने उन्हें जी चंडीगढ़ सिटी तो पहुँचे ने सतीश अनेजा ते बिमला अनेजा और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया पप्पी ते सोनू भाटिया जमशेदपुर तो हाजिर होए ने और अगला सुनेहा पिन कबूल शाह खुबण जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तन्नू पवी जस्सी सत श्री अकाल भेजी है और हमेशा की तरह लिखे है कि प्रोग्राम इन्हों बहुत वधिया लगता है। साउथ अवेन्यू बोहर तो पहुंचे ने जसपाल भारती वीना भारती सुरिंदर मनदीप डिंपल युवराज हरप्रीत ते शिवाय और आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी सौरव साइना ते निवान शर्मा ये साढ़े अद्धा दे स्रोते ने चाहे देश होन चाहे विदेश च इन्हों का सुनेहा पूरे समय नाल 10 बजे पहुँच ही जाता है। बहुत ही तारीफे काबिल गल है और तुहाडा प्यार जिहड़ा है वह बोलता है जिहड़ा तुसी साडे रूहां नाल जुड़ चुके हो और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर मोता सिंह नगर जलंधर तो मनोज जैन समता जैन बिट्टू राजा मट्टू रानी और इन्हों दे नाल न्यूजीलैंड वाले भी पहुँचे ने अभिषेक जैन मनजिंदर संधु जशनप्रीत और बेबी संधु आशीष खुराना हर्ष तीर और इंडिया जिंदाबाद लिख रहे ने चाहे या न्यूजीलैंड तो लिख रहे ने और राम राम जी कौन कहते ने सानू बिल्कुल जी जैन परिवार पहुँच चुका है मुल्लापुर दाखा मंडी तो राजेश जैन अरुणा जैन दीपक जैन ते गौतम जैन शुक्रिया जी साडे वालों भी राम राम जी तुहानू और तुहाडे वालों भेजे सारिया के नाम असी पढ़ ले ने और उम्मीद करते हैं भी इस तरह साडा साथ जिहड़ा बनिया ही रहेगा। पिंड हीरा वाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा भी पहुंचे ने लो जी अगले सुनेहे दे नाल पहुंचे ने पिंड तेजा मोरी अंबाला तो बंसी लाल संधु पोतरे कबीर ते जसबीर और पोतरियां भी पहुंचियां ने वरनीत ते पवनीत कौर ते सारा ही संधु परिवार पहुंच चुका साडे कोलों बिल्कुल जी तुहाडा मैसेज जिहड़ा है वह कबूल हो गया और कबूल हो के लोकां च भी पहुंच गया। ਝੱਜਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਟੀਆ ਰੀਟਾ ਰਜਤ ਅਤੇ ਮਿਅੰਕ ਭਾਟੀਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਰਾਵਲੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਰਮਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭੋਂਗਿਰ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਰਾਹੁਦੀਨ ਫਜ਼ਾਨ ਲੱਲਾ ਫਰਹਾਨ ਲੱਲਾ ਸਮਾਇਰਾ ਆਜ਼ਮੀਨ ਗੁੜੀਆ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਤਨੇਜਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਨੇਜਾ ਆਸਥਾ ਤਨੇਜਾ ਮੋਹਿਤ ਮੱਕੜ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਔਰ ਐਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਣਵਾਲਾ ਹਨਵੰਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਮਾਇਲ ਸੀਮਾ ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਯਸਿਕਾ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਦਾਦਰੀ ਗੇਟ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਹਰਾ ਕੋਮਲ ਮਿਹਰਾ ਕਿਰਨ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਮਿਹਰਾ ਔਰ ਨਿਊ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਅੰਗੂਰਾਨਾ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਪੋਤਰੇ ਵਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਵਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਅਰਮਾਨ ਅਵਿਤਾਜ਼ ਕਨੇਡਾ ਔਰ ਕਾਕਾ ਦਿਆਵਿਕ ਅੰਗੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਗੁਰਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ

सदानंद कुमार गौरव और तमका पानली, अगला सुनेहा अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सरबजीत, रानी सोनू ते रजनी। और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने अमरजीत सोनम कौर, परमजीत असमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर, नुसरत जहां नूर जहां। पिंड चंदमारी तो मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिड्डा, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या ए भी हाजिर ने। और खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयू सिक्का, कोल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का भी पहुँचे ने। भी एक सुनेहा साढ़े को पहुँचा सी, उन्होंने डिलीट कर दिता है। क्यों डिलीट कर दिता है मैं जानती नहीं, पर तुसी डिलीट किया है तो जरूर पहुँच जाओ साढ़े कोल, क्योंकि हुण तुहाडी ही वारी सी नाम पढ़न दी। और अगले सुनेहे दे नाल पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो पहुँचे ने मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ ते मोहम्मद शादाब खत्री। लो फिर परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो साढ़े इंजीनियर भी पहुँच गए ने, अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत, अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर। ब्रैम्पटन कनेडा वाले भी इन्हों दे नाल ने, निखिल भाटिया, नीति भाटिया ते महरीन भाटिया। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च पिंड बिल्लीमार नाम ने जी प्रेम कुमार, प्रवीण रानी, अलीशा अरमान, रमेश कुमार, ममता रानी और गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ च गीत सुनने दे चाहवान ने साढ़े स्रोते। और अगला सुनेहा बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर तो श्रद्धानंद आर्या, अभियानंद आर्या ते परमानंद आर्या। सारिमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी ते आसमा खातून अंसारी ये भी पहुंच गए ने जी। वेद प्रकाश, कौशल्या, रोहित, अर्चना, चित्रा, अक्षु और ये पहुंचे ने जी हरिपुरा अबोहर तो। उन्नती KSD सादुल शहर तो वेद पाल, इंदु बाला, राकेश, शाकिला, रोहिणी, अभिनव, सानवी, मीकू, शशि, बिश्नोई ते अर्पित ए भी पहुंच गए ने। और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने छत्तीसगढ़ सरगुजा मैनपाट तो आदिबा थापा, सोनम फातिमा ते आसमा थापा। झांसी MP तो फकरू वली अंसारी, फर्जी वली और फर्जू वली अंसारी। विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास, रोशनी ते शगुन गांव खोखरा वाली तो पहुंचे ने। सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, प्रीतिशा ते मैक्स ये पहुंचे ने कुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो। पिंड चतरा तहसील जीरा जिला फिरोजपुर तो जगजीत सिंह चतरा, प्रेम भूषण गुप्ता, गुरचैन सुखचैन, कुलदीप सिंह, बेअंत सिंह, हरनेक सिंह, बूटा सिंह, जीत सिंह पैंच, गुरसेवक सिंह चतरा, अजीत सिंह सहोता ते लिखारी सभा दे मैंबर साहिबान साढ़े कोल पहुँच चुके ने। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगा वाला चौंक और आया तो हाजिर ने जी। और जलालाबाद वैस तो सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा भी पहुँच गए ने। कृष्ण बागला, आशा साजन, प्रिंस रजनी, आंचल ते वंश बागला ये पहुंचे ने पिंड थह कलंदर तो। और साढ़े सोहनिया सोहनिया चिट्ठियां भेजण वाले स्रोते, सोहने सोहने सुनेहे भेजण वाले स्रोते सहारनपुर तो आशा नारंग, सोनाली ते सुरेश नारंग। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो राजस्थान तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, शोभा नायक, JS नायक ते सारा ही डागला परिवार पहुंचया है। रजिंदर नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तान्या बठिंडा रोड मंडी डाबवाली तो पहुंचे ने। और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने पिंड पांडर कवड़ा तो पहुंचे ने जी अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। इन्होंने लिखा जी आपका हर पल खुशियों से भरा हो, बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाडा भी हर पल खुशियां नाल भरिया होवे जी। और अगले

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बार पहुंच गया है पिंड सुबाना डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का। तो तपा मंडी तो पहुंचे ने शमशेर सिंह हांस ते सतपाल मान। और अगले सुनेहे दे नाल साडे कोल हाजिर ने जगदीश कुमार मक्कड़, अरविंद, मुकेश, नीरज, भूविन ते पूरा मक्कड़ परिवार पिंड कबूल शाह खुब्बन डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो पहुंचे ने जी। राजकोट तो भी आ गए ने जी, गुजरात तो। आहा, ढोकला लेके आए ने। रश्मि झरना भरत कुमार, बहुत स्वागत है जी तुहाडा। और अगले सुनेहे दे नाल पिंड जाफरा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो फलक सिंह, राजू, बब्बू, सोनू ते अमनदीप ये भी पहुंचे ने। हीरा बाग जगराओं लुधियाना तो पहुंचे ने जगदीश पाल मेहता, लीलावती मेहता, हरदीप पाल मेहता, अंजू बाला, पारुषी ते दीपांशु मेहता। और अगले सुनेहे दे नाल पहुंचे ने जी नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली, रजत, लव, कुश ते खन्ना परिवार पहुंच गया है। सफीदों मंडी हरियाणा तो है पहुंचे ने जी। और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने श्री गंगानगर तो जगमोहन सिंह, अरनेजा, बजरंग शर्मा, सोनू, मिंटू, करण, हरगुन। और गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो संत राम चावरिया, अंकुश, कुसुम ते पूनम। और साजन देव पहुंचे ने जी एडवोकेट ने श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पिंड लालबाई जिला श्री मुक्तसर साहब तो नछत्तर सिंह ढिल्लों, पिंड भगवानगढ़ भुखियां वाली तो बलदेव सिंह, पिंड ढिलवां तो सुखदीप सिंह गिल, पिंड गिद्दड़बाहा तो बाबू सिंह ढिल्लों, पिंड लालबाई तो तेजा स्वामी। लै किसी नूं भी इन्होंने नाराज़ नहीं किया, देखो किन्नी सोहनी गल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी एके च रहिंदे हो तो एके च ही बरकत हुंदी है। ते अज फिर सारे दे जिन्ना जिन्ना दे भी नाम लिखे ने ना, उन्होंने जफियां पानियां आके तुहानू। अगले सुनेहे दे नाल पहुंचे ने जी गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश तो राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा ते कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ तो मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा ते पीहू स्वर्णकार भी पहुंचे ने। पिंड कैरों जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद ते पोत्रा गुरशबद भी पहुंचे ने। पिंड कुलारा तहसील शाहकोट जिला जलंधर तो स्वर्ण टेलर, बलदेव टेलर, राजू, पवन, लव, हनी पहुंच गए ने। राकेश नरेश, जगदीश अंग्रेज, पट्टी सेवक सिंह ये पहुंचे ने जंडवाला, चढ़त सिंह तो कनेरा मोहला पटियाला तो पहुंचे ने जी बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस नहावकर, निर्मला विशाल, और मलकापुर महाराष्ट्र तो सोपान ताइडे, नारायण इंगले, आशीष मुहेरकर। पिंड रामा जिला मोगा तो दविंदर पाल शर्मा, गुरदीप राणी, साहिल शर्मा, वीरचंद, उर्मिला देवी। अगले सुनेहे दे नाल कलानौर तो नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन ते मयंक शर्मा। लो फिर तुहाडे सारयां लई सतविंदर बुग्गिया दे गाए हुए गीत जिहड़ा है रेडियो सैट ते पहुँच रहा है। ते फिर ये गीत एवें ना जावे, नचना जरूर है।

शामिल कर दिते ने जी। और इस गीत नू सुनो और इस गीत दे नाल धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम खत्म करन दी मैनू यानी दीपाली नू दियो इजाजत, पर तुसी किते नहीं जाना, जुड़े रहो अलग अलग सिलसिलियां दे नाल।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के लक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0 शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा

0: आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
2: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
2: This agreement would open up new opportunities.
3: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: Both the countries, India and the United Kingdom.
1: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ये समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें यह नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुनोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुनोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसी हरी सिंह गिल ते साथियां दी आवाज च गाए लोक गीत सुनोगे। दूजी सभा विच 4 दीआं मुख खबरां तों बाद 4:02 ते प्रोग्राम सुनोगे सदा बहार गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे 17 जुलाई नूं जलंधर विच होण वाले दौरे दीआं तैयारियां चल रहीआं ने। इस दौरे दौरान जलंधर छौणी रेलवे स्टेशन दा उद्घाटन कीता जाएगा ते नाल ही अमृत भारत स्टेशन योजना तहत देश भर दे 74 होर पुनर विकसित रेलवे स्टेशनां दा वी वर्चुअल माध्यम राहीं उद्घाटन कीता जाएगा। प्रधानमंत्री अमृतसर नूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी नाल जोड़न वाली संत रविदास एक्सप्रैस नूं भी रवाना करेंगे। जलंधर पहुंचने तो पहला श्री मोदी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का भी दौरा करेंगे, जिथे उन्हां वल्लों वख-वख बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों का उद्घाटन करन दी भी संभावना है। भारत बरतानिया मुक्त व्यापार समझौता अज तो लागू हो गया। अज इस समझौते तहत तैयार किए गए कपड़ों की पहली बरामद खेप न अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो सफलतापूर्वक रवाना किया गया। यह विशेष व्यापारक खेप एयर इंडिया की सीधी उड़ान राही बर्मिंगम ले रवाना की गई है। इस मौके कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर लुधियाना तो भी अज एक उत्पादों की खेप न रवाना किया गया। भारत सरकार दे सूखम लघु ते दरमियाने उद्यम MSME बारे मंत्रालय तहत चल रहे राष्ट्रीय SC ST हब प्रोजैक्ट तहत अज पटियाला विखे SC ST उद्यमियों लिए जागरूकता प्रोग्राम करवाया गया। MSME लुधियाना के ज्वाइंट डायरैक्टर पंकज कुमार झा ने दसिया कि इस प्रोग्राम का उद्देश अनुसूचित जाति ते अनुसूचित कबायली भाईचारा के उद्यमियों की समर्था च वाधा करना है।
1: आज हम यहाँ पे नेशनल SC ST हब के द्वारा आयोजित BDP प्रोग्राम के अंदर आए थे, जिसके अंदर हमने अपनी मिनिस्ट्री से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी, ताकि जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स हैं वो इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। मेन मोटो है कि जितने भी वांछित वर्ग के हमारे एंटरप्रेनर्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। SC ST हमारे भाई बंधु हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, तो उनके लिए जो हमारी स्कीम्स के अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं एंटरप्रेनर्स के लिए उनके बारे में जानकारी दी है। इससे उन लोगों को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी।
0: इस प्रोग्राम दौरान सूबा सरकारां, केंद्रीय सरकारी उद्यमां, बैंकां, उद्योगिक संस्थावां ते होरनां हिस्सेदारां दे नुमाइंदे भी शामिल होए। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कपड़ा सनत विच निवेश लई पंजाब नूं भारत दे सब तों पसंदीदा स्थान वजों करार दिंदिआं कहा कि सूबे विच समुची टैक्सटाइल वैल्यू चेन संबंधी अथाह मौके उपलब्ध ने ते इह उद्यमियां लई इक पारदर्शी उद्योग पक्षी माहौल प्रदान करदा है। कल नवीं दिल्ली विखे भारत टैक 2026 दौरान पंजाब स्टेट पवेलियन का उद्घाटन करन मौके पंजाब सैशन नूं संबोधन करदिआं मुख मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार वालों निवेश, रोजगार ते बराबर नूं उत्साह देण लई इक नवीं उद्योगिक ते व्यापारक विकास नीति पेश कीती गई है ते सिंगल विंडो ते सिंगल पैन प्रणालियां राही समाबद्ध प्रवानगियां नूं यकीनी बनाया जा रहा है। उन्हां कहा कि पंजाब ने पिछले 4 सालां विच 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है ते रोजगार के 5 लाख मौके पैदा किए ने। सूबे के उत्पाद अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, लंडन ते होर कई आलमी बाजारों समेत दुनिया भर के गाहकों तक पहुँच रहे हैं। उन्हां कहा कि उद्योग सिर्फ उत्पादन बारे नहीं बल्कि ये लखां परिवारों को रोजी रोटी प्रदान करता है, जिस नाल महिलाओं लई भी मौके पैदा होंदे ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि MSMEs नूं सशक्त बनाउणा, नवीनता नूं उत्साहित करना, बरामद नूं मजबूत करना ते सब तों वध समूहिक आर्थिक विकास विच महत्वपूर्ण योगदान पाउण लई इस समें दी लोड़ है। पंजाब दे जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि सूबे विच मानसून सीजन नूं लैके सरकार वल्लों पूरियां तैयारियां कीतियां गईयां ने तां जो किसी भी तरह के हालात नाल नजिठिया जा सके। मानसून दे सीजन दौरान हड़ वर्गी किसी भी स्थिति तो सूबे दे लोकां दे बचाव बारे कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दवाया कि सरकार ने सूबे भर विच लोकां दी जान माल, वाहीयोग जमीन ते जनतक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई इक मजबूत निगरान प्रणाली ते रक्षा ढांचा तैयार कीता है। उन्हां बीते दिनी तलवाड़ा विखे पौंग डैम च पानी दा पद्धर ते जायजा लेंदे हुए डैम च पिछले साल नालों पानी दे पद्धर च गिरावट दर्ज की गई है ते सूबे च मानसून सीजन नूं लैके प्रबंध पूरी तरह अमल च लियांदे गए ने। उन्हां कहा कि पंजाब भर विच हड़ सुरक्षा ते ड्रेनेज प्रबंधन वर्गे कार्जां विच ड्रेनां दी सफाई, वड्डे पत्थरां नाल हाइब्रिड सुरक्षा कार्ज, बन्ना नूं उच्चा ते मजबूत करना, फ्लड कंट्रोल गेटां दी कार्यशीलता अते संवेदनशील थावां ते ठोस हड़ रोकू प्रबंध करना शामिल है। पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ वासियां

फौजी वीरो पेश कर रहे हैं तुहाडे लई प्रोग्राम दा अगला गीत, दिल है कि मानता नहीं। फिल्म चो लिया गया, आवाज़ां दित्तियां ने अनुराधा पौडवाल ते कुमार सानू ने, गीतकार समीर ते संगीतकार नदीम श्रवण।

0: भारत और बर्तानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तिजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुरदनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। आज ओडिशा के लिए मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक समझौता जो आज से नाफिज हुआ है भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने ये बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही। वजीर आजम ने मजीद कहा कि CETA से भारत के किसानों, कारोबारियों और MSMEs को काफी फायदा पहुंचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज्यादा रिसाई हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशावराना खिदमात और जिद्दत तराजी में इश्तराक को वसत हासिल होगा और हुनर याफ्ता भारतीय अफराद की ज्यादा आमदोरफ्त में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरका खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता आज से लागू हो गया है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुरदनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तिजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है जिसके दायरे में सभी रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फरोग देने से मुतालिक काउंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते से मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आज़ाद तजारती मुआहिदे को भारत के आज़ाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संग मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि मजकूरा मुआहिदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकत दारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फरोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। जनाब स्वरूप ने भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदे के निफाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। एसोचेम के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मस्कूरा मुआहिदे के जरिए दुनिया की दो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कदीम जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि और ज्यादा भलाई, नीस, बेहतरी के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीके अपनाने की जरूरत है।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि

0: आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीक़ाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये नई रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से जोड़ेगी। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकत दारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कानून साजों को बामानी बहस व मुबाहिसे और तामीरी तबादला ख्याल के लिए इज्जत मिलती है, न कि ऐवान में रखना अंदाजी के लिए। विधायी गौरव यात्रा के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि राजस्थान की जमहूरी मुजाकरात और तौर तरीकों की एक शानदार रिवायत है। इस यात्रा का अहतमाम राजस्थान कानून साज असेंबली के 75वें साल के मौके पर अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। असेंबली को जमहूरियत का एक स्कूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अवामी नुमाइंदों की नुक्ताचीनियों को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अच्छे कामकाज की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही वक्त का तकाजा है।
1: लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो, मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेही जनपद भी होना चाहिए। समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, वही जनपद सफल होगा और वही शासन सफल होगा।
0: भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाज़ियात पर मुअस्सर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। ये बात अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल मौजूदा तनाज़ियात में बामानी तरीके पर मुदाखलत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। शिमाल मशरकी भारत के बाज हिस्सों बिहार, मगरबी बंगाल और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश होने का अंदाजा लगाया गया है। फीफा आलमी फुटबॉल कप 2026 में स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरों खबरां तो बाद फिर हाजिर।

0: और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया, सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे,

0: सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
2: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
3: The Security Council has been ineffective.
4: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
3: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत

0: के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और

0: हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने हरी सिंह गिल ते साथी। लो सुनो इन्हां दी आवाज़ च सब तो पहले प्रोग्राम च शाह दाऊद।

रंगली धरती आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। आज तुसी हरी सिंह गिल ते साथियों की आवाज़ च गाए लोक गीत सुन रहे हो। आओ हुण सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च पूरन भगत।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठी है जी श्री मुक्तसर साहब तो बाबू सिंह तिमान बलजिंदर कौर तिमान ते रवनीत ते निशु लिख रहे ने मसीता डब वाली तो दर्शन लोट सरगुण इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लोट ते मलोट तो जगतार गिल परमजीत कौर गिल गैवी गिल अमन गिल ते बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू अविताज सिद्धू जगतार जग्गा ते धौला किंकरा तो इन्हां दे नाल जगतार जग्गा जी ते मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा राज शर्मा मंजू शर्मा आशीष शर्मा बिट्टू जैन दीपक जैन ते पुराणी मंडी मुल्लापुर तो राजेश जैन अरुणा जैन अभिषेक जैन गौतम जैन रसगुल जैन ते नगीना जैन ते मंडी अहमदगढ़ तो बिट्टू राजा नरेंद्र शर्मा सविता शर्मा ते पुष्कर शर्मा एनसी जैन डीसी जैन ते राजा जैन इन्हां दे नाल ते गांधी चौक रोपड़ तो हरदेव मिका बलविंदर विरक जय तेग विरक ते मिका विरक फरमाइश इन्हां सारे दी आवाज़ है सज्जन अदीप दी

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठी है जी आरायण तो डॉक्टर बनवारी जयपाल बिमला जयपाल सोनू ते ममता जयपाल मोक्ष दिशा सुशांत ते विक्रम जयपाल लिख रहे ने। गुरमीत सिंह मीता लिख रहे ने जी साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो चिट्ठी ते चंडीगढ़ तो है सतीश अनेजा ते बिमला अनेजा ते लिखण वाले ने जी मोहल्ला पै जांदा इन्हां दा फतेहगढ़ लुधियाणा तो चिट्ठी है विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी अनीतापुरी ममता मेगा पूजा पुरी ते गगन कपूर गुंजन कपूर लालसा कपूर रमा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी पाली डीसी ते अरनपुरी ते लिख रहे ने जी सुखा सिद्धू सतेंद्र सिद्धू अभिजीत सिद्धू खुशप्रीत सिद्धू नवनीत ते सारा सिद्धू परिवार पिंड हैगा इन्हां दा कंत वाला हाजर खां जिला फाजिलका तो चिट्ठी है जी। भवनाल हाजीपुर तो लिख रहे ने विजय कौंडल पूजा कौंडल अलीशा ते इन्हां दे नाल आदिया ते सारा कौंडल परिवार फरमाइश इन्हां सारयां दी विरासत संत दी खूबसूरत आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एआई।
1: पेश है हुन तक दियां चौणवियां खबरां।

तुम मिलो या ना मिलो, दुआओं में रहोगे, हर मुस्कुराहट की वजह बनकर रहोगे। ये मोहब्बत किसी शोर की मोहताज नहीं, दिल की हर धड़कन में सदा तुम ही रहोगे। प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत, और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो।

कुछ दर्द दवा से नहीं, किसी की मुस्कान से कम हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर तकलीफ को भी खूबसूरत बना जाते हैं। सदाबहार गीता दा अगला नगमा दर्द फिल्म चुलिया, आवाज़ा आशा भोसले ते

प्रोग्राम चल रहा है सदा बहार गीत और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। प्रोग्राम दा अगला गीत मिली फिल्म चो लिया गया, आवाज़ किशोर कुमार दी, संगीत निर्देशक ने एस डी बर्मन।

तेरी याद का मौसम जब भी चला आता है, दिल का हर कोना खामोशी से महक जाता है। कुछ लोग दूर होकर भी इतने करीब रहते हैं कि हर धड़कन में उनका ही नाम सुनाई देता है। पेश है सदाबहार गीत दा आखिरी नगमा, ससुराल फिल्म चुलिया। आवाज़ मोहम्मद रफी दी। इस गीत नु लिखिया हसरत जयपुरी ने।

राम राम बोल बोल खोजते बड़पागी, हर का पंथ को बतावे हौ ताके पाए लागी। खसम प्रभु दी पाल विच बिरहों कुठी आत्मा, परमात्मा दी पाल लई प्रभु दे नाम दे रसियां दे चरण परसदी हुई बेनती करदी है कि कोई हर प्रभु दी प्राप्ति दा मार्ग दसे। चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी राग देव गंधारी विच उचारे गए शब्द विच भी एहो जही जिग्यासा लैके बेनती करदे ने। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

मेरो सुंदर कहा हो मिला कित गली, हर के संत बतावा मार्ग हम पीछे लाग चली। इस शब्द गायन की तासी पाई हरजिंदर सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने। प्रभु पति नालों विछोड़ा कष्टदायक हुंदा है, दूरी लम्मेरी पास दी है, इंज महसूस हुंदा है कि पिर परदेस सिधाए। तंजीव रूपी स्त्री सज्जन प्रभु नु मिलाप लई सुनेहे कल दी है। राग तुखारी विच उचारे गए शब्द विच ऐसी अवस्था दा वर्णन है। साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी, सार समाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द दा गायन कीता है भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी सारस माले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इसे शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी संतोख सिंह।
1: साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परिंदी मुंद नैन परिंदी गुण सारेंदी क्यों भरा मिलां प्यारे मार्ग पंथ ना जाणू विखड़ा क्यों पाइए पिर पारे सतगुर शब्दी मिले विशुनी तन मन आगै राखै नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखै। गुरबाणी आशे अनुसार हरेक मनुखी आत्मा उस परमात्मा रूप पति दी जीव स्त्री है। मनुखा जन्म धारण करन वालियां सारियां आत्मावां दा मूल मनोरथ उस परमात्मा विच अभेद होना है जिस तों ओ विछड़ के आईयां हन। अजिही अवस्था दा बयान इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। ये पावन शब्द मनुखता दे रहबर कलयुग दे तारनहार धन धन श्री गुरु नानक देव जी का उचारिया होया है जेड़ा कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कत्ती रागां विच्चों बाईवें राग तुखारी विच्चों लिया गया है। ये राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1107 अंक तो लैके 1117 अंक तक दर्ज है अते विचार अधीन शब्द पावन अंग 1111 उपर सुभाए मान है। इस संपूर्ण

गोविंद प्रीत नूं अत प्यारा बयान करदे ने ते स्पष्ट करदे ने कि जदों तो मैं साधु पुरशां दी सच्ची शरण कीती है, मेरे हिरदे विच मुरारी प्रभु दा वासा होया है ते मेरा मन सुकून प्राप्त कर गया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 607 ते फरमान है, गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

ई अत प्यारी जब सत्संग पए साधु जन हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो आपूसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के

0: प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की दो दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलनबरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 हुए ने। हुण पेश है प्रोग्रामां दा वेरवा।

हुंतों कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। आज इस विच काम दियां गल्लां, आज दे पा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल सिलसिला होएगा मेरी खेती ते किसान उद्यमीकरण ते संचार बारे डॉक्टर हरप्रीत सिंह नाल होई गलबात तुसी सुनोगे। सतवज के 4 मिनट ते समाचार समीख्या प्रोग्राम पेश करांगे। सतवज के 45 मिनट ते पंजाबी वार्ता प्रोग्राम च डॉक्टर सुदर्शन गासो दी वार्ता सुनोगे मां बोली दा महत्व। इस तो फौरन बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। रात 8 बजे पेश करांगे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 8:15 बजे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 ते आधारित रेडियो रिपोर्ट तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र राही। इस तो फौरन बाद भजन सरवन करोगे। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट ते 9:30 बजे चर्चा का विषय है प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 10 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा ते 10:02 बजे ते पेश करांगे जी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। रात 11:10 बजे ते प्रोग्राम सौगात पेश करांगे डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र राही। सो इसी जी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे।

अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:06 हो रहे हैं। हुण तुसीं सुणोगे प्रादेशिक खबरां बस कुछ ही पलां च।

0: ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो।

0: the Income Tax Department.
1: ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7:30 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਬਰਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सैमी कंडक्टर डिजाइन ते निर्माण इको सिस्टम नूं मजबूत करन लई 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट नाल सैमीकॉन 2.0 नूं मंजूरी दे दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब का दौरा करेंगे। वो जलंधर छौनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे ते अमृत भारत स्टेशन योजना तहत मुड़ निर्मित 74 होर रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों अपनाने का सद्दा दिता है। चोण कमिशन ने पंजाब में वोटर सूचियों की विशेष तीबर सोध SIR 11 दिनों का वाधा कर दिता है। तो फीफा फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल के दूजे सैमीफाइनल में अज अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सैमी कंडक्टर डिजाइन ते निर्माण इको सिस्टम नूं मजबूत करन लई 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट नाल सैमीकॉन 2.0 नूं मंजूरी दे दित्ती है। अज नवी दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग तो बाद सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया नूं दस्या कि सैमीकॉन 1.0 की सफलता नूं अगे तोरदिआं इस योजना का उद्देश भारत नूं आलमी सैमी कंडक्टर नक्शे ते लियाउण लई सरकार की वचनबद्धता नूं अगे वधाउणा है।
4: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
3: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ 2.25% ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 39,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਲਟੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰੀਆ 2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
4: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शाहराह 19 ते वाराणसी रिंग रोड विचकार 46 किलोमीटर तो वध लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कोरीडोर नूं भी प्रवानगी दिती है। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी शहर नूं भीड़ भड़के तो मुक्त करने लई वरुण नदी के नाल नाल राष्ट्रीय शाहराह 31 ते वाराणसी रिंग रोड नूं जोड़न वाले 43 किलोमीटर लंबे 6 ते 4 लेन वाले एलिवेटेड कोरीडोर के विकास को भी प्रवानगी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब का दौरा करेंगे। अपने दौरे दौरान वो जलंधर छौनी रेलवे स्टेशन का

आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। कहिंदे ने कि चंगे कर्म हमेशा चंगे नतीजे लियांदे ने। दूजा दी मदद करना ते सच्चाई दी राह ते चलना जीवन नू खुशहाल बनाउंदा है। सो जनाब, कदी भी सच्चाई दे रस्ते नू छड्डो ना, हमेशा उस ते चलण दी कोशिश करो।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 2026 ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਬ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਧਾਮ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਖੇਤਰ ਪੁਰੀ ਮੇ ਕਲ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂਵਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਕੋ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਪੂਰਵਾਵਲੋਕਨ।
2: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवंत स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का

0: सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है, जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हों। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और

0: भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रु भाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
1: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं, तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहाँ राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
3: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
4: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
1: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
5: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको कपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्य आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में, सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वरण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
1: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती है। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी

0: वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
1: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पहंडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहनने में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्योचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
0: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
2: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
0: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
3: This is being laid on ensuring the smooth conduct of rituals, the nitis as we call, efficient crowd management, cleanliness and sanitation, drinking water, healthcare services, disaster preparedness and effective dissemination of public information. And all the concerned departments of the state government and also many of the government of India, they are working in close coordination to facilitate a very safe, orderly and spiritually fulfilling Ratha Yatra for the devotees coming from far across the world. The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the Sabbaths of the Sri Mandira, the officials, the volunteers and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city, and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
0: पुरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि

0: कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 ते आधारित रेडियो रिपोर्ट साडे दिल्ली केंद्र राही। हुन सर्वण करते हैं भजन। पहला सुनते हैं अनूप जलोटा दी आवाज च भजन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

केंद्र रही। हुन सरवण करते हैं भजन। पहला सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज च भजन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी सर्वण कर रहे हो भजन प्रभु हम पे कृपा करना।
1: प्रभु हम पे

0: सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका

0: फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
2: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
1: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
3: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
4: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न

0: हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9।

0: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय

0: ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी शुक्रिया,
2: नमस्कार।
0: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इनक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे। और दूसरा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है। हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है। जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी, क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
0: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कॉम्पोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए

0: आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है?
1: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या तलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर, वो घट के ज़ीरो हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है, उसमें ज़ीरो हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है, उसमें 18% था, उसमें जीरो हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स, वो बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें 18% है, जीरो हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था, उसमें जीरो हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है। इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज़्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक MSME सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफ़ी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT एनेबल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने की डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो MSME सेक्टर हैं ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं, इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहाँ पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स कटते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो कंट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
0: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात FTA के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स

0: पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाए और दोनों देश इससे लाभ भी उठाए।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है एक कोटा के थ्रू। जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
0: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
2: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुँचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की, उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल कीकृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो एफटीएस जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
0: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
1: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारे

0: आईटी सर्विसेज हैं, या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं, या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं, या फिर हमारी जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी। उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और या वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है, और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर। तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ। तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं ये समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे। लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहाँ पे, जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफ़ी एक धक्का पहुँचा था। तो मेरा मानना ये है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है उसमें एक काफ़ी एक धक्का मिला है उसको। और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज़्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है, उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी, और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है, जो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूँ कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा, ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी, वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे,

0: तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है, वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही हैं, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज़्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही हैं। और ख़ास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज़्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज़्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज़्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनज़र उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज़्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारे इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज़्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नज़रिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो ज़रूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीज़ों में, सब चीज़ों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब ज़ीरो में आ चुकी है। नाउ ज़ीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज़्यादातर एमएसएमई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती हैं, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी जो पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि ज़रूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्राजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हर एक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव

0: सेक्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट. एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं. और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं. और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा, अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है. एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे. दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस. जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे.
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
2: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में. इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारे जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए. और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफ़ी इंक्लूसिव होगा. हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा.
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है. ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा. चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है. डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार.
0: शुक्रिया. थैंक
2: यू. धन्यवाद.
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: चर्चा का विषय है.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@

0: prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वाले दा स्वागत करते हैं जी। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। प्रोग्राम च अगले गीत दी फरमाइश जिहड़ी साडे को पहुंची है जी, सुनना चाहते ने वड़िंग खेड़ा तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, डेरा कलोनी तो धर्मा सागर, इंद्रजीत मंगा, अवतार सिंह पन्नू, मथौला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो सानू फरमाइश भेज रहे हैं, रेलवे कलोनी हनुमानगढ़।

फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, डॉली सिंह, नवराज, हिमानी, शैलेंद्र सिंह, गुरदयाल सिंह सानू चंडीगढ़ तो फरमाइश भेज रहे ने। आदर्श नगर मलोड तो राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना ते निवान शर्मा, पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो मनजीत कौर, दपिंदर, गुरशब्द, जीत सिंह ते इन्हां दा पूरा बराड़ परिवार, कुलवंत गिल मलोड़ तो सानू फरमाइश भेज रहे हैं जी। दाऊदसरा सहारनपुर तो अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर ते जगरीफ अंसारी, जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह ते शिवानगी धाकड़ सानू फरमाइश भेज रहे ने। रतलाम मध्य प्रदेश तो, पिंड उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो राजकुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन ते इन्हां दा पूरा ही परिवार। आओ हुण सुनते इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश ते धर्मात्मा फिल्म दा एक गीत मुकेश ते कंचन दी आवाज़ च।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIP

0: यू 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी। सर
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते
1: जी, मैं
0: कित्थे?
1: राजू बोलदा जी, चंडीगढ़ तो।
0: होर सुनाओ राजू जी, की हाल चाल है तुहाडा?
1: बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
0: मौसम केहो जा रिहा अज
1: मौसम
0: चंडीगढ़
1: दा
0: दा जी?
1: गर्म है सर जी, बहुत
0: हुमस

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: जी, मैं परकर सिंह लोग बंद समा जिला बरनाला जी,
0: जिला केड़ा जी?
1: जिला बरनाला जी।
0: क्या बात है जी, की करदे हो जी बरनाले च?
1: आप खेतीबाड़ी करते हैं जी। हूँ
0: ते की बिजाई कीता जी?
1: झोना लाया वा जी,
0: झोना?
1: कुछ मक्की का 4 रुपए जो जे लाने वाला रहिंदा है तो
0: अच्छा जी।
1: वो लावांगे 1 करोड़ जी।
0: ते रेडियो दे नाल कदों तो जुड़े हुए हो? हाँ जी।
1: तीजी पीढ़ी के बच्चे जुड़े हुए हैं जी। पहला मेरा बाबा जी जुड़े हुए थे, उस
0: अच्छा जी, ठीक
1: तो बाद मेरा मेरा बापू जी जुड़े हुए थे जी,
0: है जी।
1: उस तो बाद मैं आ गया जी। जितों रेडगा शुरू होया जी, मतलब रेडगा प्रोग्राम चालू होया, उत्तों इलाके जुड़े भी हैं।
0: ठीक है जी। ते सिंगर दस दो जेड़े गायक दा तुहानू गीत सुनाइए।
1: कुलदीप मानक सुना दो जी कोई वधिया जा गीत जी।
0: जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी। इसे तरह अपनी फरमाइश लै
1: थोड़ी
0: के प्रोग्राम से शामिल होंदे रहा करो जी।
1: पेशकारी बहुत वधिया जी।
0: चलो जी, तुहानू पसंद आया है, तुसी वधिया हो, तुहानू पसंद आया।
1: नहीं जी, आपां सारे
0: ते
1: वधिया जी, आपां रल मिल के
0: हाँ जी, ते
1: प्रोग्राम बहुत वधिया पेश करदे हो तुसीं,
0: इसे
1: असीं
0: तरह,
1: सुणदे हां जी बहुत
0: हाँ
1: वधिया
0: जी,
1: शौक नाल।
0: इसे तरह अपनी फरमाइश लै के प्रोग्राम च शामिल होंदे रहा करो, क्योंकि तुहाडे वर्गे दोस्त जद तक प्रोग्राम च शामिल नहीं होणगे ते प्रोग्राम दी लड़ी इन्नी सोहनी नहीं बन सकती। फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। कुछ सुनेहे भी शामिल कर लैने जी, जिन्हां चो आया जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा ते सीटी दीवाना। महस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी, गुरमन्नत। गीत सुनना चाहते हैं हरजीत हरमन दा, जरूर इन्हां दी फरमाइश पूरी करांगे। ते अगला सुनेहा जी सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर तो, आदर्श नगर मलोड़ तो, पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना ते निवान शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार, जिस विच है जी मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। गीत दी फरमाइश इन्हां दी भी जरूर पूरी करांगे जी। और अमरिंदर गिल नूं सुनना चाहते हैं, पर इस समय कुलदीप मानक दी आवाज़ च एक गीत।

शर्मा, इंदिरा शर्मा, सुरेश शर्मा, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार तो हैं जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही ते मेहराज जहां, बाजवा कॉलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम चंद, अनमोल, दीपक, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली बाजार जगराओं तो, सरहंदी बाजार पटियाला तो, प्रेम कुमार रहेजा, कांता रानी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, जोत, सजनी ते इन्हों का पूरा परिवार ते, इस वेले गीत हंस राज हंस की आवाज़

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: नमस्कार जी। बस
0: नमस्कार जी, ते अपने बारे दस दौ जी, कौन ते कितों जी, ते
1: जी मैं जनकराज जी गुरदासपुर तो। सर
0: गीत दी फरमाइश भी दस दौ जी।
1: जी लगा जी जंगला जरदा इना किती ना कमाई ना रात की खाना। तो
0: जरूर
1: सर जी ना मैं एक मैं राजू जी हूँ बधाई जिन्ना जिन्ना राज लकी
0: गीत सुनाने हैं जी तुहानू, तुहाडी फरमाइश दा जी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दसते हो जी, कौन थे, कित्थो जी?
1: मैं सुंदर सिंह आवाज़ पिंड मोहे खालसा पुस्ती
0: ते गीत दी फरमाइश
1: सलीम मान का सुनाया तो
0: कुलदीप मानक दा गीत जरूर सुनावांगे जी। ते रेडियो दे नाल कदों तो जुड़े हुए हो जी?
1: बहुत टाइम हो गया, भरा
0: हाँ जी।
1: बहुत टाइम हो गया,
0: ते किहो जिहा लगदा है जदों
1: बहुत ही
0: प्रोग्राम
1: बढ़िया।
0: च कॉल मिल जाती है जी? गीत तुहानू सुनाने हैं कुलदीप मानक जी दा, कोठे ते गलासी।
1: ठीक है जी,
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: अश्विनी जी, सत
0: हाँ जी,
1: श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी,
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा।
0: गीत केड़ा जी?
1: निम्रत खैरा दा ला दे, तुसी की कर दे हो?
0: क्या बात है, की कर दे जी।
1: हाँ जी, धन्यवाद
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: जी।

साहिब ने ताणिया का ताण, आए न जाई थिर सदा, गुर सबदी सच जान। सच्चे शब्द द्वारा ही उस अकाल पुरख दी महिमा दा बोध हुंदा है। शब्द ब्रह्म है, शब्द गुरु है, इसे करके ही गुरुआं दे मुख तों उचारे हुए मधुर बोल अत मिठे लगदे हन। ऐसे बचना नू सरवण करके मानो अंधकार मनफी हुंदा है, ज्ञान रूप चान।

0: मेरा मन सबद लगो गुर मीठा, खुल्यो करम पयो परगासा, कट कट हर हर डीठा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उना दे रागी जत्थे ने। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। गुरु के शब्द का जिकर जाप करना है तब बिल्कुल सहज अवस्था विच विचरदे हुए करना है। ऐसा करन दे नाल तत दी प्राप्ति हुंदी है। मानो मन दे विच प्रभु दे दिदार दी रीझ पैदा हुंदी है। सुनदे हां डॉक्टर जसबीर सिंह साबर होरां दी वार्ता, गुर कै शब्द अंतर सहज रीधे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे।
1: ए विचारधीन पंक्ति तीसरी पातशाही विच प्रवेश होई नानक जोत श्री गुरु अमरदास जी की उच्चारण की हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 231 उपर राग गौड़ी के अंतर्गत दर्ज है। अठा पदों वाले इस शब्द विच गुरु साहब जी वल्लों मानव जीवन सुधारन सवारन ते शिंगारन दे लई कई सार्थक पहलू दर्शाए गए हैं। खास तौर पर विचारधीन इस पंक्ति गुर कै शब्द अंतर सहज रीधे विच प्रथम गुर के शब्द की बरकत की सार्थकता ते समर्था, फिर आत्मक जीवन की सफलता अते इस सफल आत्मक अडोलता का साधन सहज अवस्था। इस सहज अवस्था की युग के अंतर्गत जदों मानव आत्मा प्रभु की सिफत सलाह फोके कर्म कांडा की थां मन बच कर्म नाल करती है तां सुते सिद्ध उसके हिरदे कमल विच प्रभु मेल लई रीझ पैदा हो जाती है। इस सारे

सतगुर सबद उजारो दीपा, बिनसेव अंधकार तेह मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द का गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दी कीर्ति उस दे गुण गायन करके कीती जांदी है। जिहड़े प्राणी गुरु के शब्द नू सहजे ही गायन करदे हन, ओ सहज दी अवस्था विच विचरदे हन, मानो आनंद दी अवस्था उन्हां नू प्राप्त हो जांदी है। सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गहर निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। इस शब्द का गायन कीता है भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

सूख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हर रतन बताया गुरु नानक अंगद अमर लाल उत्तम पद पाया गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आया बड भागी उन मान्या रेद शब्द।

0: खेल गुड़ो क्यों हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखान्यो गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजो नी संभव कै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगय गैन ब्रह्मान दहन से तल सुखदातो असंभो उदव्यो पुरख पूरन बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो।
1: जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तुह जस बक्ता कल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुर मत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समय उदार अहमेव निवारण महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुट सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नन खुट गुर रामदास तन सर्ब मैं।

0: लाख में अलख लखायो अगम गोचर गत कबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सरसो पर परायो गुर गम प्रमान अदर दरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुचर तै सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गोर सूर शब्दों में निवार्यो पंचाहर निदल्यो सुन सह निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उदर्यो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुचरे तें जन के कलस दिपायो
1: सोरठे गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चल नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उदरयो जगत उदारन नाम सतगुर टुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन
2: सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूर

0: जब लौ नहीं भाग लला हृदय तब लौ परम ते फिर ते बहुत आयो कल कोर समुद्र में डूबत थे बूढ़ थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
1: अंत न पावत देव सभै मन इंद्र महाशिव जोग करे हुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा।

0: जग और न यह महात्म में अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। हे पद्धत ते मथ चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो, पर ताछ्रदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदारन, बसह संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन। निर्मल भीख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जाने आओ भयो तह समसर सोई। धरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पार, पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रताख्य हार।
2: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै, नित पुराण बच है वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर ढुले नाम अमृत मुख लिहियो, गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो। हर बंस जगत जस संचरियो, सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
3: देवपुरी मैं गयो आप

0: आसन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो।
1: एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार।

सरसी कामणी चरण कमल से ओ प्यार मान तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार सावन सरसी।

पौड़ी च पैंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वडमेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दरमंगण भिखना पाएंदा दरमंगण भिखना।